कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्य देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
0: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार। निक्षय

0: मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री ने कहा भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात यूएई नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा निवेश

0: प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह

0: प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गो में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्षर झियो मानंकु पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

ट्यून कर चुके अपने मारे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक कृत वो मित्र अच्छे अपन को सहायता यस आज मॉर्निंग मेलोडी शो रे मो आज अपन को एमिति किछि कथा कहिबे एमिति किछि दुनिया को नी जिबे जोठी अपन को सब स्मृति ना ताजा है जब हां 90 दशक रो सही उड़िया एल्बम गीत किछि स्मृति आ किछि अनुभूति भरा कहानी यस आज रही म्यूजिकल जर्नी आपण को नहीं जब से सुनेली समय को जितेबले प्रेम व्हाट्सएप रे नुह चिठी रो आरंभ होतेला आ जितेबले गीत डाउनलोड हो नथिला बरंग कैसेट रिविंड करी सुना जाउथिला एवं हृदय रो भावना को शब्द देउथिला ओडिया एल्बम गीत हां से समय रे एल्बम सॉन्ग माने थिला प्योर इमोशन प्रत्येक गीत रे थिला इनोसेंस आओ प्रेमरे थिला अपेक्षा आ विच्छेदरे थिला नीरव कष्ट सेमती किछि ओडिया एल्बम सॉन्ग जहा एबे भी सुनिले हृदय भीतर थिबा तार टिना बेसुरा हेइ जाय बड़े बड़े सोरो सबकु आमे सहजाड़ी की पाद नाचिबा को लागे से कैसेट डेक रे थिला सेत बलर कथा से बही धरी पाठ पढ़ला बेले मन पड़ी जाउथिला श्रीचरण महांती बही रे लिखी तोर ना हाँ किसी गीत गुनगुनो था तो मित्र सहित 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

सुनिश्चय अपने मने देवो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक री यस आओ शो चाली छ मॉर्निंग मेलोडी राव आमे कथा हो छे से 90s रो एल्बम गीत गड़े को नेकी हां आज जितने मॉडर्न म्यूजिक आसो किंतु 90s रो से कैसेट जुगर गीत सुनिले आज भी लागे जीवन केते सुंदर थेला हाँ समय बदली जाए टेक्नोलॉजी बदली जाए किंतु किछ गीत किछ स्मृति सब बड़े हृदय रे जीवंत हेकि रहि जाए हाँ मु आज इमती गोटे गीत विषय कहू छी जो गीत केवल गीत नुह गोटे अनुभूति आ जीवन रे गोटे यात्रा हाँ बयस राजपथ रे गीत टी शक्ति मिश्र द्वारा ये जो गीत टी सतरे मो तो ऑल टाइम फेवरेट आज भी मु जेबे भी सुने ये गीत एमिति लागे जेमिति मु सेई बयसर राजपथरे अटकी जाई छे हाँ से सुमधुर कंठ से भावना से गभीरता से सब किछि जेमिति गोटे नॉस्टैल्जिक मेलोडी है थाए आज भी सुनिले मन कोठी ना कोठी अटकी जाए 90s एरा रो ओडिया एल्बम गीत माने प्योर इमोशन हाँ और सही जुगरे शक्ति मिश्रा गीत भी थिला प्रत्येक हृदय धड़कन

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनिश्चिंदी अपने मने दो मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रियान दिल से दिल तक शो स्टार्ट ही जाइए डायलिन लाइव रॉ यस समय वर्तमान स्टूडियो खोले डे 9:54 आओ हाँ आज दिन टी खूब खास कहेंगे ना आज ही होची विश्व परिवार दिवस एमिति गोटे दिन जो आम को मन पकई दिए जीवन रे जिते बड़ सफलता आसुना कहेंगे दिन शेष जो दुईट कांध आम को आश्रय दिए आम परिवार हाँ परिवार केवल गोटे शब्द नुहे हूँ भल पाइबार प्रथम स्कूल और संपर्क प्रथम अनुभव आ जीवन सबुठ सुरक्षित ठिकाणा आम परिवार तेबे आज आपण सहित मुझे कथा हाँ चाहूँगी कि आपण पर सबुठ प्रिय व्यक्ति जनक आपण किए जन डायल कर मत नंबर हूँ 0671-230-3153 कॉल कर सबुठ प्रिय व्यक्ति जनक किए नि भाव में जनातु चलते देखिए आम फर्स्ट कलर भी आस फर्स्ट कलर किए अच्छा सी कौन कहते आज टॉपिक को लेकिन हेलो
1: मैडम आज्ञा नमस्कार
0: नमस्कार के कहते कौटू कहते
1: नमस्कार आज्ञा मैडम मु कटक मुड़ागार राजेन्द्र नना कहते
0: केमती अच्छा आपण
1: आज्ञा एम तो मंदिर अच्छी पूजा पाठ चलती मुझे कल करदे देखा प्रोग्राम हमी ना हूँ है
0: अच्छा आज हूँ विश्व परिवार दिवस प्रश्न रही निज पर सब प्रिय व्यक्ति जन किए
1: निज पर सब प्रिय किए
0: आज्ञा
1: निज पर सब प्रिय इष्ट देवता निज बापा किए
0: अच्छा आपण आपण बापा माँ आपण अति प्रिय ना कौन
1: सब पर निज पर इष्ट देवता निज पिता माता से उच्च सम्मान दबो जहाँ कर आगे अर्पण करमें निजे ग्रहण करे से न कर लोक भूल होगा लाइन
0: अच्छा आपण भल लाइन को धरिकी रही था एमती बापा माँ को भल पा था बहुत बहुत धन्यवाद कल कर आपण भी कल करी परिबे अन द नंबर 0671-230-3153 रे एवं शेयर करी परिबे आपणक कथा मो सहित आपणक परिवार रे आपणक सबुठ प्रिय व्यक्ति जनक के चलन देखिबा हमरा नेक्स्ट कलर के अछन एन से कण कहू छन हेलो
2: हेलो मैम नमस्कार
0: नमस्कार जय जगन्नाथ के कहू छन कोड कहू छन
2: नमो प्रफुल्ल पधार कहतली कुआरपाला माणेउली
0: केमती अछंती
2: मैम बहुत बढ़िया आछी
0: अच्छा कहतु आज टॉपिक उपरे कौन कहे
2: नाम प्रिय मनीष दिजन तो आमको छाड़ी चली गले कहते बहुत अनुतप्त मनीष अच्छी बर्तमान प्रिय मनीष निज ढांगी निज पा प्रिय मनीष किए रपा माँ व्यक्ति आने रे आगु तो बापा माँ थे तेनालीस मैम झील आम चार जन
0: अच्छा तो सबुठ प्रिय किए आपणकर चारि झियो भितरु सबुठ प्रिय किए आपणकर
2: सबुठ प्रिय मैम जेते तो बड़ झियो जन्म होला ते तो बहुत खुशी
0: आज्ञा
2: एले एकदम खुशी तापर तो समते भलो आ खराब काहु कहिया किंतु सिय जतल प्रथम झियो आसीला सेते आमे समते परिवार सब आ बापा मां बोले एमिति खुशी होइले बोले ससाय बाबू की कोन से हवा खुशी होनते तो नाचनी होइ गला
0: बड़ झी प्रति बहुत भल पाइबा अच्छा जेहेतु सी आपको सुजोग देते प्रथम बापा माँ कह सतान
2: बड़ निश्चित समस्त मैम समस्त देख प्रथम जी आसला संसार को सी पुह हौ बा झी हौ से निश्चित खुशी दब से खुशी टाइम आगे खुशी आप बोले आमको आगे से बात देखेद बोले गोटे खुशी मनीष खुशी खुशी चली गोटे समस्त भल खराब नुंति समस्त बहुत खुशी कितु जिते प्रथम से आसला से आम पर खुशी मो भाई मान खुशी बोले आम पर बहुत खुशी आमर से पर जड़े पुह गोटे बड़ मझा एक बड़ा किसी नीले पत्र समस्त पर सहित खुशी होलु विशेषकर बापा को माँ खुशी गले दिह खराब है मो माँ चार दिन जाए खाइलानी नाचुनी कौन दिह पा खराब हो
0: झील मैंने आज शुणु निहाते जानी जब बड़ अपा को बापा के
2: मैम

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

Yes, आपण मानंगे एसएमएस अपेक्षा रे देबो मित्रा श्योर रहिबो चलन देखिबा आजर प्रथम एसएमएस के कोठ पठी छंती एवं कोण लिखि छंती एही एसएमएस आसुची कोटिलो जगसिंहपुर रु पठी छंती मुन्ना पंडा एवं डेडिकेट करू छंती समस्त लिसनर्स एवं आरजे अफ आकाशवाणी कटक समस्त आर्जेस मानक डेडिकेट कर स्पेशली डेडिकेटेड टू टुना भाईना राजेश नायक गरीब खान एवं बासंती खटुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

शौचालय चिरेन भयस मिश्र अप्रमाणे ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक रे देव मित्र अछि अपनंग सहित चलन देखबा परवर्ती गीत पई कि आउ कछु रिक्वेस्ट कर छंती एवं तांगर रिक्वेस्ट बडा गीत कण अछि एही एसएमएस पई रिक्वेस्ट करु छंती सुमनत साहू जिगरण पटामुंडी केंद्रापडारु एवं सुनिबा को चाहै छंती ओ माय लव चलचित्र रु आकाश रे मेघ तु गीत टिको निहाते भाबरे अपनंग मनपसंद रो गीत देव मित्र अपनंग को शोर सुनिबो ताले चलन दो बिल्कुल बिलीव न करी सुनि नबाई ब्रुफुल सा ट्रैक को

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछ असुविधा है नी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

जूही चावलाको जर्नी र टर्निंग पॉइंट हला सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक रे। एही सिनेमारे तांकर एक्टिंग पूरा दमदार थिला आउ तांकर को एक्टर थिले आमिर खान। ए फिल्म परे जूही चावला पूरा फैन मानकर धड़कन बनी गले।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। ए दिल से दिल तक सफर रे मु अछि मोनालिसा आपनक साथी रे। गीत सुनिबाकु हम समस्तंकु बहुत ही भल लागे। जदि गीत टिके पुरुना माने एवरग्रीन थाय ना से गीतरे बहुत सारा सुगंध थाय। अनेक मेमोरी ताजा हे जाय आउ आमे भावना भितरे पूरा पूरी डूबी जाउ। कौन सती आपण मो कथा सुनी किछि भाबी गले कि किछि पुरुना मेमोरी निहाती आपणकर फ्लैशबैक हेउतिबो। तेबे साथी आपणक भावना को ठिके अटके सुनी देउछि हिंदी फिल्म रो से एवरग्रीन सॉन्ग खास औ खास आपण मानक पई। तेबे पहुंचे देउछि सुनथांतु आउ कहुथांतु दिल से दिल तक।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनीता केमिति अछ आउ आज एठी केमिति
1: नमस्कार दीदी आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबा को आसीतिली
0: अनेक अभिनंदन किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य दे दियो एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रे रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि
0: ना ना किछि असुविधा है नी तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो
1: ठीक अछि दीदी
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्य देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना, किछी असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.yuwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में

0: नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जो शो रे ढेर सारा चिटचैट सह गानार झलसा आ मु अछि आपनक सह मोनालिसा आज हमें ढेर सारा कथा बा गीत मध्ये सुनिबा आज चर्चा रे तेबे साथी

0: The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sathvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekhana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discussed energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchanged key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosho elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sathvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर

0: भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है

0: हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने

0: का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से यह सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

पल बढ़ते चले चल, हिम्मत रख ना होने दे डर को घर, हौसले रख बुलंद नया दौर फिर आएगा, परवाह ना कर उस कल की, सवेरा एक नया ही लाएगा।

हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर।

0: अरे कविता, भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपण को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरि एक कैंसर

हे फ्रेंड्स ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे आपण मानक सहित आपण का रेनबो साथी नारायण हाजर हि जैछि आउ आपण मानक सहित मीठा मीठा गीत मीठा मीठा कथा शेयर करिवो ता सहित आपण सहित सफर जारी रहिबो राति 11टा बजे 10 मिनिट पर्यंत तबे आशा करू छी आपण माने समस्त बहुत भलो रहिबे खुश रहिबे आपण को मूड एकदम बेहतर थिबो ना कोन कहउछंती हां टेंशन रहिबो व्यस्तता रहिबो सबु परे भी आमे आम निज जीवन को केमती स्मूथली नहीं की जीवा से विषय आपनको केवल चिंता करबा को पड़िबो आपन जदि निज विषय चिंता न करिवे फ्रेंड्स ताले आपनको संपर्क रे बा आपनको विषय की चिंता करिवो हां आइ परे आपनको नेचर लोक निज को चाहू आपनको चाहूतवा लोक माने आपनको पाखरे समस्त अछंती किंतु बेले बेले ना समय आसे से समय रे धारा रे समस्ते एते बिजी हि जानती आपनको भीतर रो जहा जहा भी समस्या आस्तुबो जहा जहा भी उदासीपणा आस्तुबो जो एकलापणा आस्तुबो से सबको समस्ते बेले बेले देखि पारंती नै हां हे पारे आपनको परिवार लोक मन देखि पारंती किंतु आपनको भीतर रो कोन परिवर्तन आउछि काहे कि परिवर्तन आउछि से संपर्क रे से मानको हेतो जानिबा बहुत कष्टकर हे पारे एकटा कहबार अर्थ होछि आपन सब बेले निजरो ख्याल रखंतु निजरो निज विषय चिंता करंतु प्रथमे तापरे अन्य मानको विषय चिंता करिवे आपन हेल्दी रहिले आपन स्वस्थ रहिले सब किछि संभव हे पारिबो सदी समय छि सरिला आफ्टरनून रो गुटे सुंदर मुहूर्त को आपन मानको स्वागत करिवार आपन को रेनबो साथी नारायण बहुत बहुत स्वागत करू छि आजरो सरिला आफ्टरनून रो एई सुंदर अपराह्न को सदी मोर कहि कि मन पड़ू छि एई समय रे विशेष करि आपनको पाखरे बस आपनको किछि कहिला बेले आपनको किछि गीत सुनिला बेले एक्जेक्टली मोर मन पड़ू छि से पुराना कथा हाँ आपनको देखिले आउ एई सुरिला आफ्टरनून कथा जेते बेले आसे सेते बेले से पुराना समय पुराना कथा पुराना लोक पुराना संग पुराना साथी एई मनको कथा बहुत मन पड़े ता भितर गोटे कथा आज मन पड़ू छि सेटा मु निश्चित भापरे से कथा को आपनको पाखरे शेयर करबी भाबुची आपन माने भी सेई समय को पुणी फेरी परिबे आ से गोल्डन टाइम को आपन आपनको हृदय भितरे पुणी तोली धरि परिबे आ आपनको स्मृति रो से जो कोनतिनी कैनवास रे ताकु प्रतिभासित करि परिबे ना कोन कहउछंती सेटा होची आपनकर जो नुह कि माने आपनको जे आपन जेतुले स्कूल को जानती बाहर को जानती आपनको किछ न किछ पॉकेट मनी सतब मिलतबो देखिबा गले वर्तमान जेमती पिला मानको पॉकेट मनी मिलु छी से समय रे सेति कि पॉकेट मनी प्राय समस्त को मिलु नथला बहुत कोचित पिला मानको मिलुथला माने कोहते नै सहरे जणो को मिलिबा बहुत कष्ट थिला सेते बेले पैसा उपर बेसी इम्पोर्टेंस नथला सेते बेले आमे पाठ पढा प्रति बेसी गुरुत्व दउथले स्कूल रे बसला परे खेल छुटी आमे जो कोहते जो सब समय टिके फांका मिले से समय रे जहा भी स्कूल रे प्राय हे थाए सेटा आमे खाऊ किंवा मझेरे भी से सब जिनस बंद थी आछ कि पिला मान जो आपण मैंने अच्छा आपण मान समय भी से समय सरकार तरफ स्कूल दि जाऊला एवं तो कंटिन्यूसली दि जाऊँ तो खाइबार से टेनसन उणा अधिक

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

104.4 कटक दिल से दिल तक रेसो चली बर्तमान सोरिला आफ्टरनून सोरिला आफ्टरनून आम कथा से पुराणा कथा पिलादिन कथा पॉकेट मनी कथा ता सहित किछि मीठा मीठा गीत मध्य सुनछंती

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। इंटरनेट 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज न इसके साथ महान अवसर लाए। इसके बाद मानव जाति में बहुत सारे बदलाव हुए। इंटरनेट के बारे में बात करते हुए और अब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ पेश किया गया है। किसी के साथ संपर्क में रहना अब मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया प्रावधान जैसे स्टेटस अपडेट हमें पूरे शब्दों को एक महत्वपूर्ण विषय या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में व्यक्त करने की अनुमति देती है। कनेक्शन केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर के अधिक लोगों से संपर्क करना और जानने के लिए भी बहुत आसान है। इंटरनेट मानव जाति के लिए वरदान रहा है, लेकिन विज्ञान द्वारा हमें दिए गए हर दूसरे आविष्कार के रूप में इसमें कभी ड्रॉबैक्स का भी हिस्सा है। कुछ भी ज्यादा होना अच्छा नहीं है, हालांकि ये फायदेमंद हो सकता है। यही सोशल मीडिया साइट्स के साथ समस्या है। इसने दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दी, जिससे दूरी के बावजूद लोगों के बीच बेहतर संचार यानी कम्युनिकेशन हुआ। ये हमें अन्य संस्कृतियों के करीब लाया। हमने उनके बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन इसने एक नई समस्या को जन्म दिया जो सोशल मीडिया के लिए एक लत है। सोशल मीडिया के आदि होने वाले लोगों के पीछे मुख्य कारण जटिल है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर निर्भर करता है। हर बार जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो महसूस करने वाले अच्छे रसायन निकलते हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। ये हमें स्वीकृति की भावना देती है, क्योंकि ऐसे लोग इसे विशेष क्षण पर्टिकुलर मोमेंट की खुशी या इस पर निर्भर करते हैं कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। वो जो आत्मविश्वास नहीं रखता है या लगातार दूसरों के बारे में सोचता है कि और उसके बारे में क्या सोचता है, ऐसे लोग सोशल मीडिया से ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें किसी के सामने बात किए बिना बोलने या व्यक्त करने का मौका देता है। सोशल मीडिया लत आजकल एक लोकप्रिय और अनूठी घटना है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों का निदान किया जा सकता है जो मैं अब लम्हे प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर सोशल मीडिया का अनुभव करते समय उत्साहित महसूस करना, उस भावना में इतनी गड़बड़ी यानी एंग्रोस्ड होने के कारण व्यक्ति उस समय चेतना कॉन्शियस को खो देता है। सोशल मीडिया लत के कुछ शारीरिक लक्षण है दोस्तों, धुंधली दृष्टि यानी ब्लर्ड विजन है, उचित नींद नहीं लेना और सिर दर्द का अनुभव। सोशल मीडिया से कनेक्ट होने या पहुंचने योग्य नहीं होने पर चिंतित महसूस करना। प्रतिदिन गतिविधि के बारे में अपडेट करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता।

0: इसे कंपल्सिव नीड कहते हैं। ऐसे लोग जब भी लोगों के समूह के साथ होते हैं तो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। बलपूर्वक सोशल मीडिया से कटौती करते समय क्रोध करना। आजकल समस्याएं बहुत खराब हो रही है क्योंकि किशोरावस्था में यानी टीनेजर सोशल मीडिया के लिए अधिक से अधिक आदि हो रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सुलभ हो गया है। इस लत का निदान करना और उसका इलाज करना सबसे अच्छा तरीका साइकियाट्रिस्ट से परामर्श करना होगा और कुछ सेशंस व्यक्ति को व्यसन से निपटने में मदद करेगा। ये व्यक्ति के व्यवहार को काफी हद तक बदल देते हैं और अचानक पहुंच को रोकने से महत्वपूर्ण वापसी यानी क्रिटिकल विथड्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। सोशल मीडिया लत के लिए उपचार अल्कोहल के एडिक्शन समान ही बनाए गए हैं। इसमें भी विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और बहुत खतरनाक है। द पर्सन हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ ट्रॉमा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। इसीलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। लक्षण बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया की लत एक व्यक्ति के व्यवहार को बाधित कर सकते हैं। तो ये बेहतर है अगर हम इसे रोक सकते हैं और केवल हमारे जीवन के मूल में वृद्धि कर सकते हैं। इसे रोकने के कुछ तरीके में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय होगा। कुछ हॉबीज डेवलप कीजिए जो आपके खाली समय में पढ़ना, गार्डनिंग करना, पहेलियों का सुलझाना आदि में व्यस्त रखे। आप उस समय अपने दोस्तों से बात करना और कुछ नया सीखने में भी व्यतीत कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने खाली समय में परियोजनाएं बनाना पसंद करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कुछ कविताएं, गीत भी लिखते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ करें जो आपके बोरियत को दूर करे और आपको सोशल मीडिया तक अट्रैक्ट न करे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हाल ही में की गई अध्ययन से ये सुझाव दिया गया है कि उनमें से हृदय गति यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट या असामान्य रक्तचाप यानी इंक्रीज्ड और अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर का अनुभव हो सकता है। इस विशिष्ट लत में वापसी के लक्षण यानी विथड्रॉल सिम्टम्स आमतौर पर गैर जीवन खतरनाक यानी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और नशे की लत चिंता स्तर एंग्जाइटी लेवल में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, हार्मोन लेवल में असंतुलन की ओर ले जाती है, जबकि अंतिम लक्षण एक कम प्रतिरक्षक प्रणाली यानी डिमिनिशिंग इम्यूनिटी सिस्टम है। कुछ सामान्य रूप से मनाए गए लक्षण हैं: आसानी से परेशान होना, अकेला रहना, उदास, बेचैनी महसूस होना, समूह गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा या भाग नहीं लेना। डियर फ्रेंड्स, पता चला होगा कि कितना खतरनाक है ये सोशल मीडिया एडिक्शन। स्मोकिंग अल्कोहल जितना खतरनाक हो सकती है, सोशल मीडिया भी उतना ही खतरनाक है और कभी कभी उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया तो आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, आज हमारे बच्चों के हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। विद दिस वेरी यूजफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्। औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदल का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन सम्बोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000+ ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतृणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉ एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हितसम्बद्ध विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ।

0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर सकता
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

0: की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात,
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था और

सधैँ करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्वागत आपण मानंकु आजिर संध्यासर कार्यक्रमकु सधैँ आज हूँ फ्राइडे और फ्राइडे परे माने फ्राइडे आज एबे थारु आपण टिके रिलैक्स फील करथबे काहेकि ना काले हूँ सटरडे तापरे संडे पूरा रिलैक्स थे कहीं आपणकर जो वर्कलोड टिके कमिबार बहुत संभावना अच्छे वर्कलोड भी कमिबा दरकार सबुबले बिजी सबुबले काम भितर व्यस्तता भितर रहिकि निज कथा को बा फुर्सत कथा को आपण भूली जाउथबे तबे फुर्सत कथा आपणको मने पके दबो आपणको रेनबो साथी नारायण हाँ एफएम रेनबो सहित आपण माने जदि जुडी हिचंती आउ ए संध्यार आसर को आउ टिके रंगीन करबा पई जमेबा पई आपणकर भी सहयोग दरकार आपण माने जोठ भी थांतु केवल ट्यून कर था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कहीं समय बर्तमान संध्या आसर मीठा मीठा गीत सहित मीठा मीठा कथ आपाई अपेक्षा करे स्टार्ट करीठा मीठा गीतर स्टे ट्यून्ड

वेलकम बैक टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली वर्तमान संध्यासर आपण माने समस्ते पूरा बिंदास रहिबे जेहेतु आसंता काले सटरडे आउ संडे छुट्टीर दिन त बहुत टिके रिलैक्स आपण थिबे नोकि काहीं कामर बोझ टिके कमी जाइथिबो आउ आसंता काले ता परदिन पई किछ ना किछ आपणकर प्लानिंग मध्ये सरथिबो तबे जहाँ भी प्लानिंग करूँ तो साथी एफएम रेनबो सहित रुहतु एफएम रेनबो सहित सब टच रे रुहतु एफएम रेनबो आपन को निश्चित भाव में

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।

साथी बहुत बहुत स्वागत आपणमानंकु आजर गीतरे मित्रे कार्यक्रमकु संध्यारे मीठा मुहूर्तकु आपणमानंकु बहुत बहुत स्वागत।

फासलों से अगर मोहब्बत कम हो जाती तो हर रोज याद करने की जरूरत ना होती। सती प्रेमरे दूरता निश्चित आसे, प्रेम केवल जदि रहिबो दूरता आसिबनी ताले प्रेमर किछि मजा नाही। किंतु से प्रेमर दूरता को अनुभव करिबा आ ताकु सठिक दिशारे नै जिबा, प्रेमरे जेमिति कोनसी प्रतारणा न हबो धोका न हबो से सबकु जिनसकु आमे जदि देखिबा तेबे प्रेम आउ दूरता भितरे गोटे निबिड़ संपर्क सृष्टि हेजिबो। प्रेम एमिति एक अनुभूति जहाँ दुईटी हृदय को जोड़ी थाए, हेले से प्रेम जेतेबेले दूरता आसे सेतेबेले प्रतिटि मुहूर्त एक परीक्षा परि मन हुए। दूरता केवल भौगोलिक हो पारे किंतु भावनारे सेमाने सदा सर्वदा पाखे पाखे थांती। जेतेबेले आमे काहाकु माने ट्रूली ट्रू लव करू, सतसतिका प्रेम करू, सतसतिका भल पाऊ, सेतेबेले दूरता प्रेम को कमाइबा बदलरे आहुरी गभीर कर दिए। यह दूरता ही आमको बुझे थाए जे से स्वतंत्र मनुष्यटी आम जीवन में केते गुरुत्वपूर्ण।

ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचले छि वर्तमान गीतरी मितरे और गीतरी मितरे मीठा मीठा गीत मध्य आपन मन पकरे पहुंचु छि। आज हमें कथा होछन्ती प्रेमरे दूरता। प्रेमरे दूरता थिले मध्य स्मृति गुड़िक सबुबले साथीरे रहथान्ती। से बीता जाइथिबा मुहूर्त हसखुशीर दिन एवं छोट छोट कथा गुड़िक मन मध्यरे बारंबार आंदोलित होइथाय। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रे थिबा जो प्रेमी माने जानते जे फोन रो गोटे रिंग किंबा गोटे मेसेज सेमान को उठरे केमिति हस आनी दिथाय। अपेक्षार प्रतिटि सेकेंड बहुत लंबा होने हुए हेले से मीठा दरज रे मध्य एक अजब प्रकार आनंद थाए जहाँ प्रेम को जीवंत कर रखे। ए स्मृति गुड़िक ही दूरता को हरई दे थांती।

आज हमको, तू आंखें सजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अरे कविता, भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी, मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो, तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निज झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागण रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ତିଲ୍ ସେ ତିଲ୍ ତାକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा

0: खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: all the BRICS members and partner countries.
6: BRICS के सभी सदस्य और साझेदार देश

0: लचीलापन नवाचार सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूल जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि

0: प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed

साथी ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय वर्तमान आपणकर माने आपणकर खास शो रेनबो एसएमएस रा रेनबो एसएमएस को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करूछु। बहुत संख्या रे एसएमएस वर्तमान सुधा पहुंचि सारी छि, तो पटापट आरंभ करबा आपणकर एसएमएस रा कार्यक्रम। आपणकर मनपसंद रा गीत एथरे शामिल रही छि, तो आउ बेसी लेट करबानी। चंद्रकांत पुष्टि गोपपुर निश्चिंत कोली कटकु मेसेज करणवाकु चाहते असीमा पंडा कंठरे आलबम गीत तेज आपको शुणीदेबु लवेरिया आलबम्रु ओडिया आलबम्रु गीत। परवर्त स्पेस कर शशधर नायक राजबाटी नगर आठगड़ शुणवाक आज चाहते जाजावर चलचित्र गीत गई तृप्ति दास और गीता पट्टनायक। आपण समस्तंकु आपणक मनपसंद गीत आपणक पाखरे पहुंचे दउछु बैक टू बैक दुईटी गीत। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
1: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई चे तो भाई नू नचना ही पैंदा है।
0: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
2: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
3: ए गल चंगी बोली।
4: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
0: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

ससरे अगुड़ी मिसेस देखा हरुडी चंडिल झारखंड रु तुलसीदास महतो मनोरमा महतो मनमोहन महतो एवं दीनबंधु महतो मेसेज कर हिंदी चलचित्र कौन भी गीत गोटे आपण को शुणी दौ जब वी मेट मुभी गीत गीत गाइंट उस्ताद रशीद खान।

साथी समय हो आज रेनबो एसएमएस कार्यक्रम को ये रखा ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। समावर्तन राति 11 बजे को जाउछि हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रु किछि क्षण मध्यरे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस मिशन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपन मने कार्यक्रम सुनछुंदे आकाशवाणी कटक केंद्ररो।
2: नमस्कार, वर्तमान रो मुख्य संवाद सह मु संतोष कुमार साहो। हरमुज प्रणाली दे निरापद अबाध जहाज चलाचल को भारत रो समर्थन रहिछे कहिले प्रधानमंत्री। पंचराष्ट्रीय गस्तर प्रथम पर्यायर आबुधाबीठे संयुक्त आरब एमिरेट्स राष्ट्रपति कले साक्षात आलोचना। पश्चिम एशिया शांति प्रतिष्ठा दिगरे भारत गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिपार कहिले ईरान वैदेशिक मंत्री। ईंधन व्यवहार ह्रास करने आभासी माध्यम मामलार शुणाणी करने को सुप्रीमकोर्ट निष्पत्ति। राज्य में पर्याप्त परिमाण पेट्रोल डीजेल महजूद कहिले आईओसीएल मुख्य प्रबंधक कमल सिल। आसंता 30 तारीख राज्य में भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन कहते। सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 2% वृद्धि कले राज्य सरकार। राज्यर प्राय 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेनसनभोगी उपकृत। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम आसंता जून 21 तारीख में अनुष्ठित हो नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा। राजस्व प्रशासन अधीन कार्यरत मंत्रणालय कर्मचारी और क्षेत्रस्तरीय कर्मचारी बदली और स्थानांतरण प्रक्रिया को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी करने विभाग पक्ष समस्त जिलापा निर्देश जारी। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जो आसंता सोमवार मई 18 तारीख और परवर्ती सोमवार मई 25 तारीख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रही साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्ष सूचना दी। आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात सह वर्षा होने प्राय समस्त जिला को भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी करा जाई छी। मुख्य संवाद आज पई इतिकी। नमस्कार।

सुनिछन्ति भक्ति संगीत र कार्यक्रम अर्ख्य थाली केवल मात्र आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। आरंभ हो जाइछि महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा लागि रथ खळारे रथ निर्माण र कार्य। विश्वकर्मा महाराणा सेवक माने कुराड़ी अनुकूल कर रथकड़े फासी काठ से विभिन्न प्रकार रूपरेख दे आरंभ कर रथ निर्माण कार्य। तेज रथकड़े अनेक किसी कथा रही था। जो महाराणा सेवक माने उपवास रही निष्ठार सहित पूजी था रथ काठ को एवं आरंभ कर रथखार कार्यक्रम तबे क्यों भली भावरे एठी रथखारे सबु कार्य संपादित होता है। विश्व महाराणा सेवक माने जो माने रही थांती

सुन चंदिया आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाळरे आपण माने सुनछंती आपणक साथी स्मृति को कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्य थाळी बंधु महाराणा सेवक मानंकर प्रथम काम हेउची तुम्भ करती महाराणा तुम्भ पई निर्दिष्ट आकृतिर काठखंड जोगई देबा परे एहाकु बारिसीरे हाणी साइज करंती एई महाराणा सेवक माने तुम्भ हणा सरिले सूताबाड़िया बिंध कार्य अर संजोग पई बिंध ही चकरे खाप करा जाय थाए चक कार्य संपन्न हेबा परे गुज जलजंत्र कुडुका एसबु प्रस्तुत करा जाय चक सरिबा परे दंडा लागे परे दंडा कोलेई गरगरा चारिनाहाका गयळ मोडा पार्श्व गयळ निराड़ी छंदा गयळ प्रथमरु तृतीय भूई पोटल पराभाड़ी कईचफाड़ी दुआर प्रभा कनकमुंडी बाड़ बेदी सिंहासन हंसपटा कन्यापटा आदि संजोग महाराणा सेवक मानंक द्वारा संपन्न होई थाए

तबे इटी से करे छो भक्ति संगीतरा कार्यक्रम अर्घ्य थाली सुनिछंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आरंभ करुछु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवत आज शुणु यार 34 तम भाग प्रयोजना सुहास महांती

सुनिले अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवत आज सुनिले यार चौतीसतम भाग वर्णना बसंत महांति संगीत संयोजना राखाल चंद्र महांति प्रयोजना सुहास महांती।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबा को आसीतिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका आमो झियो मानन को सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानन को पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देई छंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: Hey friends, musical yours, आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को आपण माने सुनि छंती। आपणक साथी स्मृति जोड़ी जाई छी आपण मानक पाखरे एंड ता साथे साथे आरंभ हे गलानी सु शुभ सकाळ। तो दोस्तों, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ, ये नया दिन की खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। आपके साथ आपकी हम सफर होस्ट स्मृति को आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए सफर का कारनामा शुरू करते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।

रोशनी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

तो खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं, खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं। चाहे जितने भी दूर रहें आप, पर अपने तो अपने ही होते हैं ना।

Yes, my friends. आज रे स्पेशल सेगमेंट ओस्टर का करा जाउची भारतीय सिनेमा रो एक अमर नाम एक अपूर्व सौंदर्य एक सालीनता अभिनय रो परिचय वाहिदा रहमान को पाई हिंदी सिनेमा रो गोल्डन एरा कथा कहिले वाहिदा रहमान को नाम निश्चय आसीबो तांको अभिनय रे थिला सरलता ओ सेई सरलता रे से असाधारण आकर्षण निज भितरे साउंडी थिले फ्रेंड्स केवल डायलॉग कहू नथिले से आखिर भावना रे मनर कथा कहि देउथिले चलचित्र जगत रे तांकर आरंभ हेतिला दक्षिण भारतीय सिनेमा रो किंतु परे बॉलीवुड रे प्रवेश करी से तांकर एमिति छाप छाडीले जे आजि मध्य सेई युग को गोल्डन एरा बोली कह जाउची प्यासा फिल्म रे तांकर भूमिका लोकंक हृदय को जितिथिला आ गाइड वर्तमान जोटा मु आपनको सुनैली सेथरे रोजी चरित्र त आजि मध्य भारतीय सिनेमा र सबुठारु शक्तिशाली नारी चरित्र मानक मध्य रे गणा जायथाय एई समय रे एते साहसी स्वाधीन चरित्र को एते सुंदर भापरे पर्दा रे आनि परिबा सहज कथा नोह किंतु वाहिदा से चरित्र को पूरा पूरी निक्षुण भापरे गाइड चलचित्र रे देखै छथि आउ वाहिदांक कथा आसीबो डांस कथा आसीबनी क्लासिकल नृत्यर अपूर्व अभिव्यक्ति तांकर परफॉर्मेंस को आउरी अधिक मनमुग्धकर करि देउथिला तांक हसरे थिला शांति आ तांक अभिनय रे थिला एक अजणा माया से निज समय रे केवल ग्लैमरस नोह टैलेंट को मध्य समान गुरुत्व देउथिले आ सेति पई आजि मध्य नुआ पीढ़ीर अनेक अभिनेत्री तांको निजर इंस्पिरेशन बोली मानंती तांकर सिनेमा देखले लागे सतरे अभिनय एक कला आ वाहिदा रहमान से कलार जने सुंदर शिल्पी

क्या बात है, तीसरी कसम का ये ब्यूटीफुल सा गाना अभी भी जब भी हम लोग सुनते हैं ना, तब भी मतलब जैसे नया सुनने का मन कर रहा है और भी सुनने का मन कर रहा है। क्यों वही था रेमान का कथा यार, एमती गोटे सेगमेंट रहता जवाबी सारी वाणी गोटे जुगर कथा। सो आज सिलेब स्पेशल बर्थडे स्पेशल रे आज आम सेलिब्रेट कर एफएम रेनबो रे तीनोटी जो बॉलीवुड रो कलाकार मानक कथा। तबे वर्तमान आमे जहां का कथा बा से होचोनी बॉलीवुड रो ग्लैमरस कॉन्फिडेंट अभिनेत्री जरीन खान का विषय रे। वीर फिल्म रो तांकर डेब्यू स्टार्ट हेतिला आ परे निजर स्टाइल एवं पर्सनालिटी द्वारा से दर्शकों को मन रे तांकर गोटे अलग नियारा जगह सृष्टि करथिले। एंड यस फिटनेस जर्नी कथा जरीन खान का कथा उठिबो एवं फिटनेस कथा उठिबनी केमिति हबो, फिटनेस जर्नी हो कि कॉन्फिडेंस हो, जरीन अनेक युव पीढ़ी को पाई गोटे मोटिवेशन। तंकर स्क्रीन प्रोजेक्ट सब बेले स्क्रीन प्रेजेंट सब बेले थाए एकदम एनर्जेटिक एंड स्टाइलिश।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछ असुविधा है नी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल YouWin रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: କଳା ମେଘ ଦେଖି ଜମା ଡର ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ଅନ୍ଧାର କାଲି ଆଲୁଅ ହେବ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ ଯେତେ, ହସି ହସି ସବୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ କାହା ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ମପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏଇ ତ ଜୀବନର ମୂଳ।
4: हे फ्रेंड्स, सुनी छंदी आकाशवाणी FM रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक परिवा पई आपनक हम सफर हो स्मृति सहित तो चल पहुंची गलानी एंड ए मेलोडियस मॉर्निंग रे सुनीबा केची मेलोडियस गीता के

फ्रेंड्स वेलकम बैक ट्यून करी छंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक कहू था दो दिल से दिल तक।

Hey friends, welcome back. Tune करिछन्ति आकाशवाणी FM Rainbow कटक 100.4 frequency रे आमे पहुंचे छौ आपन मानक पाख को अन जो माने frequency बाहर अछन्ति से माने हमको news on AIR app live streaming रे सुनि छन्ति. Yes, so चली छि morning melody and आपनक साथी स्मृति को आजरा सकाळ रे आपन माने सुनि छन्ति. तबे सुनिबा को जमा भी भूलिबे नि प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसला स्कूल टाइम आज ठीक 9:30 बजे 30 मिनिट रे. तो गीत साथे साथे आमे कथा होचो केथे किछि हेल्थ रिलेटेड टॉपिक उपरे एंड आजिर टॉपिक रहिछि बैक पेन उपरे. सो एमिति किछि खाद्य रहिछि जोटा आपण आपणक डाइट रो रिमूव करिवा पई पडिबो जदि आपण पिठी जंत्रणा बा बैक पेन भोगुचंती. सेमती तो कह जाए अत्यधिक चीनी अत्यधिक लुण खाइबा जमा भी उचित नुह तेब ये बैक पेन पर्टिकुलरली हूँ पिठी जंत्रणा हूँ अत्यधिक चीनी आ लुण को कंट्रोल करिया को पड़ी माने लुण और चीनी को कट करिबा पाई पड़ी. मेरुदंड हाड़ पाई बहुत क्षतिकारक हूँ अत्यधिक चीनी. अत्यधिक चीनी सेवन हाड़ एवं मेरुदंड जो डिस्क अच्छी ताकू दुर्बल कर दी थाए. अत्यधिक चीनी जदि आप सेवन करुछंती प्रदाह वृद्धि हो पारे पीठी जंत्रणार कारण हो पारे आदि पीठी जंत्रणार आपण ऑलरेडी पीड़ित अच्छा बैक पेन ऑलरेडी होउछि ताहले चीनी सेवन बंद कर दिंतु चीनी खावा बंद कर दिंतु देखिए आपण निहाती भाव से उपशम पाई से भले अधिक लुण खाइबा शरीर भल नुहे. लुण खाइबा द्वारा शरीर कैल्शियम लीचिंग हो पारे कैल्शियम हाड़ को मजबूत करिबारे साहाज्य करे आउ जदि आपण पैकेज फूड खाउछन्ति चिप्स खाउछन्ति सेतरे अत्यधिक लुण थाए जोटा कि आपणकर शरीर आपणकर हेल्थ पई जमा भी भल नुह. बिल्कुल ता सहित साथे साथे पछे पछे आसी जाउछि जंक फूड पिज्जा बर्गर सिंगड़ा बिस्किट ए सब जदि मैदा रे तयारी खाद्य आपण खाउछन्ति सेटा मध्य शरीर पई जमा भी भल नुह जदि आपणकर पर्टिकुलरली बैक पेन होउछि तेणु मेरुदंड एवं तार डिस्क उपरे नकारात्मक प्रभाव पड़ी थाए एंड ता बदल रे जंत्रणा वृद्धि हिथाय. सो फाइन मैदा बदल रे आपण खाद्य रे मल्टीग्रेन अटा यूज करी परिबे ओट्स यूज करी परिबे बार्ली यूज करी परिबे ए सब खाद्य आपण आपण को डाइट रे शामिल करी परिबे.

आगु आजे तो सेमिति जदि रहुछन्ति निहाती भाबरे आपण ए सब समस्या रो मुक्ति पाई परिवे सो स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड ए जीवन को सुंदर भाबरे अनुभव करंतु एन्जॉय करंतु बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट यार आई डोंट नो तो सो सबले स्मृति कहिता प्रेजेंट रे बंचंतु एंड खुशी रहंतु ऑलवेज बी पॉजिटिव ओके सो बी पॉजिटिव रु मन पड़ा वर्तमान गोटे सुंदर गीत आसी आपखक पॉजिटिवली सुंदर सकाल को एन्जॉय करू पॉजिटिव थॉट रखंतु एंड सुंदर सकाल को सुंदर भाव आरंभ करंतु यस।

0: तबे आज आमे भी कथा होचु से विषय रे जे सेविंग करिया को केते भलो पांदी अभ्यास अछि ना नाही आपनकर एंड जदी सेविंग करू छंती ताहाले कोन कोन आज पर्यंत सेविंग करी छंती तार उपकार केमिति आपनको मिलिछि कोभळी भाबरे आपन उपकृत हेइ छंती देखिबा आउ जने कॉलर आसिगलेनी के छंती हेलो हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते हैं अच्छा आप जो कथा होते हैं रेडियो को कम कर दिखा किए
1: कहते मैडम गंजाम जिला सोरा ब्लॉक लोकामार रो राजीव गौड़ कहते
0: राजीव राजीव टाइटल
1: राजीव
0: गौड़ राजीव गौड़ आप सहित कनेक्ट होती फर्स्ट टाइम कॉल कर भाई
1: मैडम
0: सहित तो फर्स्ट टाइम कौन करती राजीव भाई आप
1: टीचर
0: अच्छा टीचर वाह क्या बात है या पूर्व भी आम सहित जन टीचर ही जोड़ी कहते आज टॉपिक ऊपर कौन कह
1: मैडम पेट्रोल डीजल सेविंग बर्तमान जो सिचुएशन निहाती पेट्रोल डीजल सेविंग पड़ो जो निहाती अर्जेंट दरकार आम बाइक ना
0: बर्तमान आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने कहुच्छे पर्सनाल बाइक हो कि कार हो सब जिन जिते कम व्यवहार कर सेते भल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने मान्यवर प्रधानमंत्री आह्वान देखते तो यह सब विषय दरकार अच्छा आप जो पाठ पढ़ाऊँ पिला सेविंग्स विषय से कहते पिला शिक्षा मिलू
1: हाँ मैडम पिछले जिते ट आवश्यक पड़ो बहुत कम
0: निश्चय निश्चय थैंक यू सो मच आज कॉल कर राजीव भाई
1: हाँ मैडम रोज नमस्कार
0: नमस्कार ए पिला कथारु मन पड़ुछि जे जेते बेले आमे छोटो थिलु ना सेते बेले आमको गुल्लक दिया जाउथिला जोंथरे कि आमे गोटे गोटे कॉइन सेव करुथिलु रखिकी आमको एटा सिखा जाउथिला जे तु रखे आणि जेते बेले बेसी हे जीव सेते बेले ताको आमे भांगीबा आणि ता परे सेटा गोटे को कामरे आसीबो बोली आमको से सब शिक्षा दिया जाउथिला छोटो बेले आज पर्यंत भी छोटो छोटो पिलामानको सेविंग्स रो जो शिक्षाटी दिया जायथाय कारण सेविंग आम लाइफ पई बहुत आवश्यक जोटा कि दरकारी समय इमरजेंसी टाइम रे आम कार्य आसी थाए सो आपण माने सेविंग करिया को केते भलो पांती कौन कौन सब सेविंग करिसेंती आज पर्यंत से विषय रे कोहंतु आमको एंड आम सहित कनेक्ट होंतु 0671230315 ए नंबर रे स्मृति रहिजी आज रा सकाळ रे आपण मानको पाखरे हेलो
2: धनो अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरी नमस्कार आज्ञा
0: नमस्कार समीर भाई
2: समीर पंडा कहती तेलंगा पिंठ कटक
0: बिल्कुल समीर भाई आम सहित कनेक्ट होती जन श्रोता तेज कहतु केमी कौन सेविंग करने को भल पाती कौन सेविंग सब कर आज पर्यंत कहतु
2: से तो कहली केवल सेविंग अर्थर नुहे कि धर्म बल संचय करवा दरकार कि कर्म बल माने कर्म बल मध्यम किसी अर्जन करने दरकार संचय अर्थ केवल जाकि साइतिक रखा नर्जित अर्जित कर्म निजर कर्म बल अर्जन करने दरकार बर्तमान जो संकटमय परिस्थिति आसी केवल बर्तमान संकट नुहे प्रत्येक समय रे प्रत्येक जिनस सहज सुविधा जोटा कहती सरल उपाय अर्जन करी संचय करबा उचित एवं जहां असुविधा समय रे आमको दरकार काम आसिबो तार उदाहरण आमे आम पाखरे थिला 2021 मसीहा रो भयाभय कोरोना महामारी समय रे केते लोक माने एटा आर्थिक उपाय रे मध्य एवं कर्म क्षेत्र रो छटे हि चंती तने जदी जदी किछि स्वल्प संचय आमे करथिबा ताने निश्चित सेथिरु मुकळिबा मु तो कहूची से समय आमे जो कोरोना समय कथा मु कहूची आमे जोठी कार्य करू आमर कार्य क्षेत्र रे कार्य मध्य कमी गला एवं आमको जहां मासुको 15 दिन पास मिलिथिले मध्य भिन्न भिन्न स्थान को गस्त करिवार थिले मध्य मासुको मात्र 15 दिन काम करबा को पड़थला एवं जे मुताबिक अधा सैलरी मिलथला तो से समय रे जहां आमर किछि संचित अर्थ थिला ताको आमे चेष्टा कलु तेणु वर्तमान समय जहां माननीय प्रधानमंत्री आह्वान देखते केवल आप कहते केवल धन रो संचय करने सहित अन्य विकल्प अच्छी

0: ଅନ୍ୟମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସଚେତନ ହେଲେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ନିଜ ପାଇଁ ଜନମାନସ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया कथा समीर भाई आज आप कहले बहुत विस्तृत भाव में आज कथा बुझे पारे बहुत बहुत धन्यवाद आज कल कर समीर फ्रेंड्स यही अभ्यास कथा जो कथा समीर भाई कहले जे अभ्यास वशवर्ती आम समस्त अति सहजरे हो जाओ जो अभ्यास को परिवर्तन करबा बहुत कष्टकर हे परी थाए किंतु चेष्टा करंतु एही सब भल अभ्यास को आपणेबा पई लाइफ रे जदि किछि एभली भाव रे खराब अभ्यास रहिछि संचय करि पारु नाहंती आपण तेनो संचय करबा आरंभ करि दियंतु एंड आगामी पीढ़ी मानंको घरे जो माने पिला माने अछन्ति से मानंको भी संचय करबा सिखांतु कारण एही जो प्राकृतिक उत्स हो किंबा आपणकर अर्थराशि हो किंबा जे कोनोसी कथा भी हो जोटा अजथारे कोनोसी प्रकार जिनिस कोनोसी गोटे जदि पेपर रे आपण जदि गारौछन्ति भी लेखुछन्ति भी ताहाले बहुत आमर अभ्यास अछि जे गोटे पेपर को आमे एमितिरे नॉर्मली गारे कि ताको काढ़ी देथौ आ गोटे पेपर आमे यूज करथौ तो अजथारे नष्ट से जो पेपर रो नष्ट बा स्पेस रो जो आमे यूज करो बा स्पेस बहुत छाड़ी छाड़ी कि आमे लिखिथौ तो या द्वारा आम भावे कौन हो छोटिया स्पेस न लिखुचे से कौन हो बहुत किसी कथा यार छोट छोट जो कहुए बिंदु बिंदु रु सिंधु तो से भाव में छोट छोट को आम अणदेखा करवा आम अभ्यास परिणत हम यही अभ्यास पुणी बड़ आकार धारण कर बहुत क्षति हम आम से जिनस आकलन करग को आकलन कर परिस्थिति भयावह हम देखिए आज जन कलर आसगले किए अच्छा हेलो
2: हेलो
1: किए कह चंदी सुचित्रा कह चंदी अच्छा आउटिके खाली एड्रेस टा कह चित्रा सिप्रा ओके आउटिके एड्रेस कारण आप कॉल टी कटी कटी जाऊँ तेणु नेटवर्क प्रॉब्लम रहू जी ठीक है
2: ढेंकनाल जिला रे परजन
1: ढेंकनाल जिला परजंग रु आप चित्रा फोन कर सिप्रा फोन कर ओके तो सिप्रा भौनी वेलकम कर एफएम रेनबो को अच्छा फर्स्ट टाइम कॉल कर क्या बात है सिप्रा भौनी कौन करती आप पाठ पढ़ुंती एते भावी कहीं कहले अच्छा ठीक अच्छे अच्छा एफएम रेनबो केमती लगे आपन को
2: बहुत भल लगे
1: ओके थैंक यू सो मच आज कॉल करले आपण आम सहित कनेक्ट हेले कहुंतु आम सेविंग विषय आज पचारुछु सेविंग करिया को केते भल पांती आ कोन कोन सब सेविंग करी छंती से विषय रे कहुंतु
2: तो सेविंग करे पे भल लागे किंतु किछि वर्तमान में सेविंग करि
1: किछि करी नाती ओके अच्छा तले आगु को करिवे ना करिवे नि ना एमति ही चालिबो अभ्यास टी
2: करिवे वर्तमान त पडा पडे करछि सेविंग करे पे सेंती किछि सेफ प्लान नै करछि तो
1: ओके तो अच्छा ठीक अच्छे बट छोट बलु ही सेविंग करिबा आवश्यक मु केवल टंका पैसा विषय कहूनी विभिन्न कथा रही सब कथा को आमे सेविंग करिबा उचित सब जिनिस को तेणु ठीक अच्छे आप सेविंग करंतु एंड तापर आम सहित कनेक्ट हेबे जेबे नेक्स्ट टाइम आमको कहिबे ओके थैंक यू सो मच कॉल करथिबारु तेबे इठी हम फ्रेंड्स मनंको कहि रखुछु आज दिन सकाल 9:30 बजे 30 मिनिट रे आपण माने सुनिबे प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसला स्कूल टाइम तेबे वर्तमान टाइम हे गलाणी आ गोटे सुंदर गीत आछी आपण मानको पाखु को ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग रे एन्जॉय करू थांतु एम रही थांतु स्मृति सहित चिपकी के एंड कहू थांतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटे दिल से दिल तक।

0: यस माय फ्रेंड्स सुन छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक अपनों का साथी स्मृति को आज रही ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिस सुन छंदी सो चली छी डायल इन लाइव चिट चैट एंड अपन माने लाइव कथा हो छंदी मो सहित 0671 2303153 ए नंबर रे एंड आज स्मृति पचारु छी अपन मान को जे सेविंग करिया को केते भलो पांती एंड आज जे कौन सब सेविंग करि छंदी कौन उपकृत हे छंदी ता द्वारा देखिवा जने कॉलर आसी गलेनी की अछंदी फोन टी कटी जाई छी नो प्रॉब्लम आपण माने आउथरे कनेक्ट होन तो हम सहित 0671 2303153 ए नंबर रे तेबे आज अल्प समय पई ही कथा ही परिवार 9:30 रे आपण मानको पई आसी जीवो प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसला स्कूल टाइम हेलो
1: पापा नमस्कार
0: नमस्कार अच्छा ठीक है वॉल्यूम कम कर दियो तो पूरा इको आसु छी
1: पापा किचन का कर कोथिले सेक्टर 11 सीडीए कटकपुर
0: आथरे ठीक है ना कहिले
1: खितिश
0: अच्छा खितिश भाई वेलकम कर छु खितिश भाई अपन को एफएम रेनबो कटक को केमदि अछंदी
1: धन्यवाद आज्ञा भलो छै
0: अच्छा आज टॉपिक ऊपर कोन कहिबे कोंतु
1: कहे आज्ञा जो रखिले आपण सेविंग विषय रे
0: हां
1: सेविंग आज्ञा एटा को समस्त प्राय आमे समाज उच्च बारे से शब्द टिक लेके समस्त हो जाया मनी सेव करिया किंतु या पछरे गोटे भलो गुण अछि निहित थाय सेटा होथि आज्ञा मित बेता जे ए गुणटे अवसर संजति थाका पाए ताको समाज आज्ञा हमको कोन कोन ताको क्रिटिसाइज करंती कि लोकटा आज्ञा कंजूस लोकटा आज्ञा मुखी चूस एमती कहते मात्र ये मितव्ययता गोटे गुण एमती जे ये सब क्षेत्र रे आज्ञा देखिबे आपण समय कहतु टंका कहतु किए आम जे कौन जिनस कौन जिनस को माने नष्ट करव करवा आईटा हूँ सब भल गुण ये गुण टा समस्त पाखे देखा रहा उचित रही कौन हम प्रत्येक जिनस इकोनोमिकाली चिंता करवा इमित किसी सेव कर मन कर मुझे गोटे कम कर घंटा लगुच घंटा भितर मुझे आज्ञा दस मिनट सेव कर
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया दिग प्रति आप

हाँ पिला माने मु भारत मसलार भरत मौसा हेले कार्यक्रमर आरंभ पूर्वरु तम मानकु मोर पदटिए कहिलो पिले ए खरा पई तम मानकु जेतेबेले आगुआ छुट्टी दिया गला तुम विद्यालय शिक्षक शिक्षयत्री माने तमकु कोन कहि छुट्टी देथिले अरे

0: हाँ जा हो पिला माने ये तमे तो सब कथा आगुरु बुझी सारी छ ई खरा छुट्टी रे निजो घर को विद्यालय भाभी समय को अपचय न करी केमिति पाठ पढिबो आगु को बढिबो आउ हम भारत माता रो ना रखिबो हेले पिला माने सबुठो बड़ खुशी रो कथा आनंद रो कथा कोन कहिलो जानिछ एमिति गोटे सुंदर कार्यक्रम टिए प्रस्तुत करी प्रति सप्ताह रे थरटिए माने स्कूल छुट्टी समय रे तमे जेतेबेले घरे व्हाट्सएप रे ऑनलाइन रे पाठ पढुछ हेले केमिति मन देई पढिबो पाठ रे तमरो मन लागिबो सेहिति पई कथा पढु पढु तम मानक लागि चिंता करिथिले भारत मसलार कैप्टेन तथा कंपनी रो परिचालना निर्देशक महोदय श्रीजुक्त सुशांत कुमार पंडा दिने मते पाखु डाकी एई भारटा मोरी मुंड उपरे रदि देले पिला माने भलो हेला मु भी प्रति सप्ताह रे तम मानक सहित टिके मन खोली कथा होवार सुजोग पाइबी हेले पिला माने एई कार्यक्रम रे तमे माने जहा जहा कथा सब सुनिबो टिके मन देकी सुनिबो कारण कार्यक्रम शेष रे हम भारत मसला स्कूल टाइम तरफ रु तम मानक रहिची प्रश्न टिए हां तुम बापा मा परिवार वर्ग मध्य धीरे धीरे हमर एई कार्यक्रम रे भाग नेबे तुम विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री माने तुमर ए पाठ पढ़ा विषय को नै निजर मतामत भी रखिबे ता छडा सरकारी ऑफिसर महोदय माने तुम मानकु ए खरा छुट्टी को तुम माने घरे केमिति काटिबो से बाबद रे निजर मूल्यवान कथा मान रखिबे तेन तुम माने मन देकी कार्यक्रम सुनिबो आ हम प्रश्नर सटीक उत्तर दे भाग्यशाली विजेता भाबरे पुरस्कृत मध्य हेबो ताहले चल रे पिले एई कार्यक्रम संपर्क रे आजिर प्रथम अध्याय रे भारत मसलार परिचालना निर्देशक श्रीजुक्त सुशांत कुमार पंडा महोदय तम मानकु तथा आजिर दिन रे आमुकु सुनुथिबा आमर प्रिय श्रोता बंधु मानकु की कथा सब कहउछंती
1: ए अवसर मोर पिला मानकु कहिबी ए जो समय टाकु तम माने बिल्कुल अपव्यय करो नहीं एही समय रे तुमे माने जेमकी स्कूल ले पाठ पढुतलो सेई भली व्हाट्सएप ऑनलाइन रे पाठ पढो ता सहित तुम माने देशर होउछ आगामी भारतर संतान सबुठार बड कथा बर्तमान तुम पई जो ऑनलाइन रे पाठ पढा तुमे मन देई ताकु स्कूल ले जो भली अनुभूति पाउथिलो से भली नहले भी घरे तुमर बापा मा अछंती तुम सांग परिवार अछन ता सहित तुमे भाविनबो तुम जोटी बसुछ सेटा होछि मोर ओटे स्कूल डेस्क आउ मु स्कूल सामने बसीची निजो को पूरा समर्पण करी स्कूल भाभी पाठ पढा पढी कर
0: आज्ञा सर आजिर समय रे जो मोबाइल कथा दिखे पिला मानको दुई थाडी
1: हां पिला माने आमे मोबाइल काई यूज करछे मोबाइल पने हम उपकार दर देखिबा बहुत पिला आमे सुनुचे गेम खेलुचंती से मोबाइल डाकु चार्जर बसेई किना बेटा कथा होचंती सब रु दूरै रुओ काईना जीवनटा बहुत मूल्यवान तम पई बहुत जीवन पडीची तमे चगलामी करो नै आउ पाठ पढ़ा प्रति ध्यान दियो मोबाइल तुमको व्यवहार न करो जे मोबाइल तुम्हें व्यवहार करो कहीं मोबाइल आम शुणा किसी शिखा किसी कथा जी आम सामना को न आसला सी मत उत्तर दे दिए किंतु जो आम गेम कर खेलवा गोटे निशा भली धरवा सोशल मीडिया को जीवा एसब कर ना कहीं तुम्हें बहुत जीवन पड़ी देखंतु जत्ते अभिभावक जबा श्रोता सुनचंती कार्यक्रम को प्रथम जदि गुरु देखा जाय ओटे पिला रो से होचंती मा बाप मा होचंती प्रथम गुरु कैना पिलाटा को प्रथम जन्म हो ताकु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो बा जा किछि मा ही ता घरे ताकु प्राय 3 वर्ष पंत 3.5 वर्ष पंत मा ही ताकु पाठ पढाए ए मोर जने झियारी अछि ता ना सानवी से मध्य मात्र 2 वर्ष हबो किन्तु सी बर्तमान बहुत बढ़िया आगे वंदे मातरम बहुत जिनस करु बाप मैंने सब बेले पिला मानकु आकट करंतु तासे तो पिलांकु प्रेशर करंतु पिलार रुचि अनुसार आपण माने निष्पत्ति नियंतु आपण जबरदस्ती कोनोसी प्रेशर दवा पिला प्रति उचित नय केना पिला जो रुचि अछि से रुचि ऊपर जाय जदि निश्चित पिला बड़ हुए किन्तु आमे ओटे इंडस्ट्रीज वर्ष को प्राय एबे जो आसुछन्ति सब 10,000 स्टूडेंट प्राय आसुछन्ति तांकर इंटर्नशिप करियाकु किछि स्टूडेंट आसुछन्ति इंडस्ट्रियल विजिट ए सब कार्यक्रम करती इटा जो

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्य देई दियो। एही टीका आमो झियो मानन को सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानन को पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देई छंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना, किछी असुविधा है नहीं। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आजि ही www.uvin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

पहली बार जब महसूस हुआ तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, तब से हर धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम लिखा है। क्यों, ऐसा ही होता है ना जब प्यार दिल को छूता है। सुनिश्चित आकाशवाणी एफएम रेनबो कैटक 100.4 दिल से दिल तक आपणक साथी स्मृति को आज रही सुंदर सकाळ रे सुनिश्चित समय वर्तमान सकाळ 9:51 बजे 51 मिनिट ऑलरेडी हे गलेनी सोईटी कहि रखु जो सकाळ 10:11 आपण मनंकर लव लेटर्स पढिबार टाइम माने आपण मनंकर अनुरोध रो गीत को प्ले करैबा टाइम जो माने हमको रिक्वेस्ट ऑलरेडी करि सारिलेनी बहुत सारा लव लेटर्स वर्तमान मो कंप्यूटर स्क्रीन रे व्हाट्सएप पेज रे सो आपण मनंकर अनुरोध रो गीत निहाती प्ले करैबी 10:11 आम सहित रहिथातु आमको सुनथांतु एमती

ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଞ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କିଛି ଗୀତ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କାଟାଗୋରୀ ୟେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି पहली दफा ये एहसास हुआ कोई इतना खास भी हो सकता है जो दिल के इतना करीब आ जाए कि हर दुआ में वही शामिल हो जाए तो ये तो दिल की बातें हैं और ये जो दिल की बातें होती है ये सिर्फ एफएम रेनबो कटक में ही होती है क्योंकि हमारा टैगलाइन भी है दिल से दिल तक तो दोस्तों आप लोग हमको सुन रहे हैं उड़ीसा के अंदर और उड़ीसा के बाहर भी बहुत सारे हमारे लिसनर्स हमसे जुड़े हुए हैं जो कि छत्तीसगढ़ आसाम ये सब राज्यों से भी हमको सुन रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं सो एफएम रेनबो कटक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे व्हाट्सएप के जरिए आप लोग हमसे मिल रहे हैं हमसे बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए मैसेज के जरिए सो बहुत सारा लव लेटर्स अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर है तो चलिए सो शुरू हो चुका है रेनबो एसएमएस का आप लोगों का फरमाइशों का गानों का सफर चलिए शुरू करते हैं ओके तो पहला एसएमएस हमसे जुड़े हुए हैं अब्बास सेन रोहित सेन अमित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट से सात रंग के सपने आती है तो चल ये गाना सुनना चाहते हैं लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्मृति मैम नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा स्टील परिवार तरफ रू ओडिशा वासिंग को प्यार भरा नमस्कार ओके सो चलिए दोस्तों आपको सुनाते हैं आपकी पसंदीदा ये सुंदर सा गाना

सुनी संध्या का स्वर्णीय फिल्म रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी डायल इन लाइव नुहे रेनबो एसएमएस ओके सो 10:10 ऑलरेडी हेगलानी एफएम रेनबो कटक रे सो नेक्स्ट एसएमएस को पढ़िबा नेक्स्ट व्हाट्सएप को हम सहित कनेक्ट हे चंती मंटू सर जिगरण पटामुंडेई केंद्रापड़ारु सोमनाथ साहू मंटू सर जिगरण पट्टामुंडे केन्द्रापड़ा लिखले नमस्कार एंड जय जगन्नाथ टू आवर ऑसम आरजे स्मृति मैम मैम आपण एंकरिंग करिथिबा मॉर्निंग ट्रांसमिशन रे समस्त प्रोग्राम बेस शिक्षणीय एंड मन छुआ हो पारी से आपण को सबुबले हृदय धन्यवाद एंड शुभ अभिनंदन थैंक यू सो मच सोमनाथ भाई God bless फर एवर ओके सो शुणा चाहते तपस्या ओडिया चलचित्र गीत झुली झुली खेले दोड़ी बहुत ही सुंदर गीत टी अनुरोध करी जयराम कंठर यही ब्यूटिफुल ट्राक टी तपस्या मुवीर चलत शुणी आपण को

को पढ़िबा हम सहित कनेक्ट हेचंती सुमंत कुमार राउत पुतुरा कान्हा ओस्तिया बांकी आठगढ़ कटक रो एंड सुनिया पई चाहि चंदी राज फिल्म रा इतना मैं चाहूं तुझे।

सो माय फ्रेंड्स, सुनिश्चित आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान सकाळ 10:19 स्मृति को सुनिश्चित आज रे सुंदर सकाळ रे मु पढुची आपण मानकर मीठा मीठा लव लेटर्स व्हाट्सएप रे आपण माने पठाई चंदी आपण को अनुरोध रो गीत आम सहित कनेक्ट हेई चंदी। रोहित मेहर बुढ़ापाली विजयपुर बरगढ़ रु सुनिया पई चाहि चंदी ओ माय लव फिल्म रो गीत ए जीवन रो बंधन गीत टिको बहुत ही सुंदर गीत रिक्वेस्ट कर चंदी आपण पहुंचुची आपण को पाखकू। रोहित मेहर बुढ़ापाली विजयपुर बरगढ़।

ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ 100.4 ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा गंजाम रो आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप रे मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए गीतटी को सुनिया पई चाहिंचंती एक दूजे के लिए फिल्म रो

ओके क्या बात है, मतलब इसके बाद भी जो मूवी का रिक्वेस्ट आया है वही एक दूजे के लिए मूवी का ही गाना है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आम सहित कनेक्ट होती प्रमोद कुमार साहू डीह साई कादोपदा जगत सिंहपुर अनुरोध कर सुंदर गीत टी को।

सो मै फ्रेंड्स सुनिछंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 10:33 सो चली छि रेनबो एसएमएस आपण मानंकर अनुरोध रहितर कार्यक्रम स्मृति रही छि आज रे सुंदर सकाळ रे आपण मानंक पाखरे सो देखिबा नेक्स्ट एसएमएस हम को के करिछंती व्हाट्सएप रे आम सहित कनेक्ट हेइ छंती प्रफुल्ल ओके निर्मला बेहरा संतोष बेहरा नातुणी आद्यासा कांतो लाठगढ़ लिखले जय श्री राधे राधे सुंदर उपस्थापना पाए दीदी आपणको अशेष अशेष धन्यवाद आगक आसुची सावित्री व्रत साधव सधवा नारीर शखा सिंदूर प्रतीक आई शुणा चाहते सती अनुसूया चलचित्र गीत प्रफुल्ल करंक कंठरे पति पादे मिली मिले पुण्यर सकाळ ए गीतटी को शुणापी चाहते पहुंचुची आपण मनपसंद गीतटी।

तो दोस्तों हमसे उड़ीसा के बाहर से भी बहुत सारे श्रोताएं सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं और हमको मैसेज करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा सुनना चाहते हैं हिना फिल्म का गाना बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया ये गाना। और लिख रहे हैं जय जगन्नाथ जी, प्रिया जय स्मृति मैम जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम दिल को छू लेता है, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से थैंक यू जी। ओके थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। पहुंच रहा है आपका पसंदीदा ये सुंदर सा गाना आपके पास।

ओके सो समय सरी सरी जाउछी रेनबो एसएमएस सो रे वर्तमान आउ मात्र गोटे दुईटी गीत ही मु प्ले करै परबी आम सहित कनेक्ट हेइ छेंदी उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु लेखले स्मृति अपन नमस्कार सब स्टाफ मानु को नमस्कार सब श्रोता मानु को गुड मॉर्निंग एंड गीत सुनिया पई चाहि छेंदी बंदिश फिल्म रंग भरे मौसम से किशोर

तो ये गाना सुन के तो एफएम रेनबो में पूरा एफएम रेनबो भी पूरा रंगीन हो गया है। वैसे तो एफएम रेनबो हमेशा रंगीन रहता है क्योंकि ये टाइटल ही है रेनबो। सुनिश्चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान 10:55। वर्तमान रेनबो एसएमएस शो को तो सारिबाकू पड़ो तेरे यही गीतर ही शेष करवा। आम सहित कनेक्ट होती कुनी एंड ऐसा पुरुणा साही केउंझर खजूरी जुआणी आम सहित कनेक्ट होती लिखले हाय गुड मॉर्निंग मैम हिंदी सॉन्ग प्रेम रतन धन पायो क्या बात है ये गीत टी शुणा अनुरोध करते पहुंचु ये सुंदर गीत कुनी आशा पाखक शुणु था एफएम रेनबो को एमती एंड स्मृति को यूठ दियंतु विदाय कारण परवर्ती आज आ किसी समय पर आस आपत एंटरटेन करेंगे आपण मान सहित कनेक्ट हो दिन शुभमय हो स्मृति को यूठ विदाय।

वेलकम ब्याक वन सेकंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली कलाकार हाँ साथी चित्रा कंठस्वर अत्यंत स्पष्ट मृदु और भावपूर्ण से गीतर भाव को अत्यंत सुंदर भाव प्रकाश करिपारंती खाली से नुहे चित्रा केवल जड़े गायिका नुहंती से जड़े संस्कृति दूत से अनेक समाजसेवामूलक कार्यर मध्य भाग नहीं संगीत लोक मान एकत्र करिवारे सहायक होई छी

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछ असुविधा है नी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारि पई उपहार नबा को आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा है नी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: नमस्कार दीदी, आज मो झी को 14 वर्ष पूरला तो तारी उपहार नाक आसी
1: अनेक अभिनंदन किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्य दे दियो। एही टीका आम झी मान सर्वाइकल कैंसर रक्षा करी थाए एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष झी मानक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुड़िक संपूर्ण मागणा करी दे छंती। मो झी को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीली।
0: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
1: ना ना किछ असुविधा है नी। तुम्हें मध्य आज ही निज झी को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल UWIN रे पंजीकरण करिनियो।
0: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झी मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुड़ी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछन्दि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी किछि कथा किछि गीत हां साथी समाज और संस्कृति रे मध्य संगीत और स्मृति रा गभीर संपर्क देखा जाए जेमिति कि पर्व पर्वाणी विवाह अन्यान्य अनुष्ठान रे गायथिबा पारंपरिक गीत माने आम संस्कृति रा स्मृति को जीवंत रखी थांती जे गीत गुड़ी का पीढ़ी रो पीढ़ी को स्मृति रो सेतु गढ़ी थाए आज आमे लोक गीत सुनचे से गुड़ी को आम पूर्वज माने को जीवन रे एक अनुभव लुचि थाए सतरे साथी स्मृति और संगीत रा संपर्क केवल व्यक्तिगत नुहे यह सामूहिक मध्य जातीय संगीत किंबा देशभक्ति गीत शुणिले आमर मनरे देशप्रेम और ऐतिहासिक स्मृति जाग्रत हुए एक साधारण सुर समग्र जाति को एकत्र करिपारे स्मृति और संगीत हेउछि जीवनर दुईटी विभिन्न अंश स्मृति बिना जीवन निर्जीव और संगीत बिना जीवन नीरस

के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं है। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

फ्रेंड्स ट्यून करछन्ती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोकटक दिल से दिल तक समय वर्तमान अपराह्न 3:00 बाजी सरिछि समय हेजी आपनकर फेवरेट शो मो देशर साथी जन्मभूमि होछि सेई पवित्र भूमि जेउठारे आमे जन्म नेउछे बढ़िछु ओ जीवनर प्रथम शिक्षा ग्रहण करिछु एही भूमि आम पई केवल माटी नुहे एहा आमर मां समान मां जेपरि निज संतान को स्नेह सुरक्षा ओ आश्रय देथाय सेहीपरि जन्मभूमि आमको परिचय संस्कृति ओ जीवनर मूल्यबोध मध्य देथाय सेहीपई आमे भलपाई कहुना एही जन्मभूमि आमा मां

0: अरे कविता भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी

स्वास्थ्य केन्द्र गुड़ी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार।